कसम है एक्स का एफ एम की इन अंतहीन को अह कमेंटिंग के सी कर हो ये कम है अटवन या को जाओ सी मोशन इशू बोली जी के ते को कर है और ये अन जी की से में चल की तरह से तो प्रेस को वीडियो एक तो तो के का को कर के तो तो के के के के के को बोली जी Stephen Ju, Giovanni Raju, Mary Patil, Special, Masuk Ini Dikenal, Baiklah, Dalam Bulan, Dekuk Kabin, Takono, Desi Kuno Buha, Social Media Maskapai Yang Meta, Anak-anak yang enggak ujian cinta hati, Facebook, Twitter, Instagram, Kidam, Fosor Universiti Kedudukan Tahu Sidi Allah.